0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
4: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वीज।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, Bradford 01274201679।
8: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए।
3: ओपन।

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Zone. Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3489। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD94QU 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, Bradford
8: 01274 201 679। यूके सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कशां बिखर गई, जिस पे पड़ गई नजर उसकी झोली भर गई, जिस पे पड़ गई नजर उसकी झोली भर गई, उसकी झोली भर गई, उसकी झोली भर गई। जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, जिसने

0: يطوفون بها.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: Anokhi waza hai, sare zamane se nirale hain. Ye aashiq kaun si basti ke yarab rehne wale hain?

0: listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: यू आर लिसनिंग टू
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on
2: 1413 AM.

झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले।

0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
1: यू आर लिसनिंग टू
11: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
11: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
9: You're listening to
0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
9: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: purposes with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
2: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का

0: शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
1: 30 वेटली हिल ब्राडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
1: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी।
7: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
9: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा। तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब,

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और

0: थ्रू हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम

0: से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3।
0: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

ये हजूम शहर सितम गरा न सुनेगा तेरी सदा कभी, ये हजूम शहर सितम गरा न सुनेगा तेरी सदा कभी। मेरी धड़कनों को सुखन सुना, मेरी ख्वाहिशों से खिताब कर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी एन डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर आप डिजिटल साउंड में हमारी नशात ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, जो कि आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं बिल्कुल मुफ्त, और आपके फ़ोन की ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और साथियों, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन आदरे और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस परा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मोहतरम और मज़ सुनने वाले इस वक्त जहाँ कहीं भी हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, बफजल खुदा आप सभी खैरियत से होंगे, और अल्लाह पाक आप सभी को अपने स्वामान में रखे। और हाँ, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी की तबीयत अच्छी नहीं है, अलील है, तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको से तो सलामती दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और साथियों, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677।

जी हाँ सामीन, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम अटकेलियाँ ज़रूर करता है, इसीलिए तो इसे मौसम कहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। और दर्जा हरारत ऐसा कि जब तक खिड़कियाँ ना खोलें यूँ लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं। और सभी नगर आज किस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें, कॉल करना चाहें, कोई फरमाइश हो, कोई पसंद हो या हमारी नशात से बाबत हमें बताना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 30667, 01274306677। और अगर व्हाट्सएप के ज़रिए आप आज के इस प्रोग्राम में फरमाइश भेजना चाहें या कॉल भी कर सकते हैं आप, वो है 00447, जी हाँ 00447-800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहला गीत आप सभी सुनने वालों के नाम जो हमारी ये नसीहत इस वक्त प्यार से, चाहत से, खलूस से सुन रहे हैं।

मोहर सामीन, अब ये आज के इस प्रोग्राम का आप पहला गीत तो सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अदालत, शायरी थी गुलशन बाबरा की, मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, कल्याण जी आनंद जी की, आवाज़ थी लता और मोहम्मद रफ़ी की। और सामीन, आज के इस प्रोग्राम में जितने भी गीत होंगे उनमें एक ही लफ्ज़ आ रहा है और बार बार आएगा। बताइए अगर आपको पता चल चुका है कि आज के इस प्रोग्राम का वो लफ्ज़ कौन है, किस रंग के गीत हैं आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं 01274306677। आप हमसे इतने ज़्यादा दूर भी नहीं हैं, अगर बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं। पहला गीत था तुमसे दूर रहकर और दूसरा गीत है तेरी दुनिया से दूर।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता और रफ़ी की, शायरी थी प्रेम धवन की, मौसीकी थी चित्रा गुप्त की, फिल्म का नाम था जबक। और सामिन अब ब्रेक से पहले एक और गीत आपके लिए पेश करते हैं, और उसमें भी वही लफ्ज़ उसी लफ्ज़ की तकरार हो रही है। बताइएगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम जितने भी गीत पेश कर रहे हैं उनमें वो कौन सा लफ्ज़ है जो बार बार आ रहा है और आपके कानों से टकरा रहा है।

0: 14:13 a.m.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, PD95BR, 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD9 4QU 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetland Lane, Bradford,
7: 01274 201679। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
5: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229627
4: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

और सामिन, अभी आप गीत सुन रहे थे, आवाज थी अरुणा लला की। शायरी थी ख्वाजा परवेज की, मौसीकी थी बाबा जी ये चिश्ती की, आवाज अरुणा लला। और इसी दौरान हमें कॉल मौसूल हुई है शकील साहब, आपकी बेहद शुक्रिया आपका, आप इस वक्त बरले पे हमारी ये नसीहत सुन रहे हैं और शुक्रिया अदा करते हैं शेफील्ड से हमें याद किए। शायदा आपने बेहद शुक्रिया आपका भी। अगला गीत आप दोनों के लिए पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो आपकी पसंद है वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी हम गीत पेश कर रहे हैं उन सभी में एक गीत की तकरार हो रही है, बार बार वही लफ्ज़ रिपीट हो रहा है। बताइएगा अगर आपको समझ आई वो लफ्ज़ कौन सा है।

और सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम पर, और ब्रेडफोर्ड की एशियन रेडियो की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पर और सीवी एफएम मिड्सब्रा से 104.7 एफएम पर भी ये नशात इस वक्त पेश की जा रही हैं 104.5 एफएम पर। और सामिन, आज के इस प्रोग्राम में हम सारे गीत पेश कर रहे हैं जिनमें एक ही लफ्ज़ आ रहा है। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि आज के इस प्रोग्राम का वो लफ्ज़ कौन सा है जो सारे ही गीतों में, सभी गीतों में आप सुन रहे हैं। आइए ग़ुलाम मोहम्मद की मौसीकी में एक और खूबसूरत गीत आप खूबसूरत सुनने वालों के नाम है, उम्मीद करेंगे कि ये गीत भी आपको पसंद आएगा। जी हाँ, शायरी है जनाब शकील बदायूनी की।

और सामिन, अब ब्रेक से पहले इस घंटे का आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के नाम है, और इस गीत के बाद होगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। ज़रूर तशरीफ लाइएगा लाइव कॉल्स में। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677।

0: man.
1: The winner is...
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए।

0: लाइए और दीदा जेब कापिर से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
0: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
3: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: और सबीना ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदीद। और सबीना, अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम। ये नशात आप लोकल डैब प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं, जी हाँ, DAB रेडियो पे। और यही नशात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर और CVFM मिर्ज़पुरा से 104.5 FM के जरिए भी सुन रहे हैं। और साथियों, अब वक्त है लाइव कॉल्स का। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। और अब लाइव कॉल्स में सबसे पहले हमारे मेहमान आ चुके हैं जिन्हें हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जनाब खैरियत से आप ठीक है मोहतरम?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है, अपना
0: ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सब खैर।
1: सुनने वालों को एक तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: अगर खालिद सलीमी साहब सुन रहे हैं, अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब अलाई हैं, शफीक भाई हैं, सादिया बहन और भी जितने सुनने वाले हैं सबको एक तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, सभी सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: तो ये कतील शिफाई की आज बरसी थी, उनकी गजल है।
0: जी जी, ये भी अभी आप ही ने इसकी फरमाइश की थी तो हमने आज के इस प्रोग्राम का इसे हिस्सा बनाया जनाब।
1: वो कहते हैं, दुनिया को ये कमाल भी करके दिखाइए,
0: दुनिया को ये कमाल भी करके दिखाइए,
1: मेरी जमीन पे अपना मुकद्दर सजाइए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। मैं चांदनी में गूंद के लाया हूँ रात को,
0: वाह वाह,
1: अब आप इससे कोई सवेरा बनाइए।
0: बहुत
1: सब ने किए हैं मुझ पे जफाओं के तजर्बे, एक बार आप भी तो मुझे आजमाइए,
0: एक बार आप भी तो मुझे आजमाइए। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मैं शहर भर में एक ही ईजा पसंद हूँ,
0: मैं शहर में एक ही ईजा पसंद हूँ,
1: घर चाहिए दुआ मेरा दिल दुखाइए।
0: क्या कहने, ये सबसे खूबसूरत शेर है, फिर से पढ़िएगा।
1: मैं शहर भर में एक ही
0: ईजा पसंद हूँ,
1: घर चाहिए दुआ तो
0: मेरा दिल दुखाइए,
1: शायद छुपा हो इसमें कहीं नाम आपका,
0: शायद छुपा हो इसमें कहीं नाम आपका,
1: दुनिया से छुप के मेरी गजल गुनगुनाइए।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा कतील का ये।
1: शायद छुपा हो इसमें कहीं नाम आपका,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: दुनिया से छुप के मेरी गजल गुनगुनाइए।
0: वो भी गालवनीनी का शेर है ना, कि अशार के पर्दे में हम किन से मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए।
1: माशाल्लाह। फिर कहते हैं, बैठा हूँ मैं अभी तो जख्मों के हजूम में,
0: बैठा हूँ मैं अभी तो जख्मों के हजूम में,
1: आना जरूर है तो अकेले में आइए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: इस रूप में तो आपको पहचानता हूँ मैं, इस रूप में तो आपको पहचानता हूँ मैं, चेहरे पे अब नया कुछ चेहरा सजाइए।
0: क्या कहने, वही जो अभी इनकी गजल हमने सुनाई थी, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं। जी जी,
1: जिल्लत पे दुश्मनी में उतर आए जो कतील,
0: जिल्लत में दुश्मनी पे उतर आए जो कतील,
1: उस बदकुमाश को ना कभी मुंह लगाइए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा।
1: ये कतील शिफाई की गजल थी।
0: और कतील शिफाई का एक कथा अक्सर मेरे जहन में रहता है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता,
1: नहीं गिरता,
0: हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, दरिया में कभी आके समंदर नहीं गिरता, और इस बंदा नाचीज पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। जनाब,
1: तो एक गजल है, ये लिखने वाले शारिक बलियावी, इनका नाम है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: कहते याद के बेरंग जख्मों को लहू मिल जाएगा,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: याद के बेरंग जख्मों को लहू मिल जाएगा, दर्द का मौसम तो आने दो, चमन खिल जाएगा,
0: चमन खिल जाएगा, वाह वाह,
1: शुक्रिया। आरजुओं के सफर की इंतहा होती नहीं,
0: वाह वाह,
1: हर नई मंजिल पे एक रास्ता नया मिल जाएगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: राह गुजारे शौक में दिल के तकाजे कुछ भी हों,
0: वाह वाह,
1: कारवाने हयात मंजिल बे मंजिल जाएगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: दिल सुलगता है तो दामन तक पहुंच जाती है आँच,
0: वाह वाह,
1: दिल सुलगता है तो दामन तक पहुंच जाती है आँच, जब कभी तूफान उठेगा सुबह साहिल जाएगा,
0: सुबह साहिल जाएगा। वाह वाह।
1: जिस दियारे शोक का था आसरा वो मिट गया।
0: वाह वाह।
1: जिस दियारे शोक का था आसरा वो मिट गया, गया। अब कहाँ मुझको लेकर ए जज्बाए दिल जाएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: तेरा कूचा हो के मक्तल हमको इसकी फिक्र क्या।
0: हाँ, तेरा कूचा हो के मक्तल हमको इसकी फिक्र क्या।
1: हम उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ दिल जाएगा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: है तमाम है रक्स दीवाना तो है पर सोचिए। है तमाम है रक्स दीवाना तो है पर सोचिए, ख्वाबगाह है नाजुक शोरे सलासिल कहाँ जाएगा।
0: बहुत हो।
1: तो आखिरी शेर करते हैं। हो रही है बज़्म में शारिक मसीहा की बात।
0: आहा।
1: हो रही है बज़्म में शारिक
0: मसीहा की बात,
1: मसीहा की बात, जख्म भी भर जाएंगे चाक भी सिल जाएगा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह।
1: शुक्रिया बहुत बहुत ठान देने के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। और यूं करते हैं कि जनाब कतील शफाई का सबसे खूबसूरत गीत जो हमें बेहद पसंद है आपके नाम है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह। अर्ज करती हूँ

हाँ, और सामिन जिस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से रंगे महफिल, स्टूडियो का फोन नंबर है 01274306770, 01274306777। अगर आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाना चाहें, शायरी सुनाना चाहें, तो आप भी तशरीफ ला सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी तशरीफ लाना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी जानते हैं 00447 800 599 563। अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगी आप सभी सुनने वालों से एक बार फिर मुलाकात। और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो आप सुनने वालों के नाम हमने पेश करना है। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम के जितने भी गीत हैं उन सभी में लफ्ज़ आ रहा है दूर, तो उसी हवाले से एक खूबसूरत गीत है जिसमें लफ्ज़ आ रहा है दूर, और गीत शायद आपके नाम हम पेश करेंगे, आप ऐसे गीत पसंद करती हैं।

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

और सामिन अभी आप सुरैया की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। और आज के इस प्रोग्राम में कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके लिए जितने भी गीत पेश करें उनमें लापसो दूर। और अब सदाबहार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और इसमें भी लफ्ज़ आ रहा है दूर। और अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी कोई गीत सुनना चाहें जिसमें लफ्ज़ हो दूर, तो आप बता सकते हैं, नंबर मिला सकते हैं आप 01274306077।

और सामीन अब इस प्रोग्राम में हमारे पास तकरीबन यूं कह लीजिए कि 10 मिनट रहते हैं, चंद गीत आपके लिए मजीद पेश करेंगे और फिर आपसे चाहेंगे आज के रंगे महफिल से इजाज़त। आइए एक और गीत हमें मिल गया है दूर के हवाले से, आवाज़ है लता की, गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

और सामिन, अब माला बेगम की आवाज में आपको गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम है चकोरी, फिल्म का नाम है नाइला, गीत आपके नाम।

और सामिन, अब वक्त हुआ चाहता है आप सुनने वालों से इजाजत चाहने का। बेहद शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभाया, इस प्रोग्राम को सुना। और साथियों, आप इसी के साथ ही आज के रंगे महफिल से अपने मेज़बान सैयद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आपका और हमारा साथ खूबसूरत शायरी के साथ आने वाले दिनों में आपकी आवाज़ के साथ आपकी खूबसूरत शायरी भी प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। ये कौन आंसुओं की सजा दे गया मुझे, ये कौन आंसुओं की सजा दे गया मुझे, जीने की जाते जाते दुआ दे गया मुझे। तो आइए सामीन खूबसूरत नगमा

उम्मीद करते हैं ये नगमा आपने पसंद किया होगा। कुछ मोहब्बत का नशा पहले हमको था फराज, कुछ मोहब्बत का नशा पहले हमको था फराज, दिल जो टूटा तो नशे से मोहब्बत हो गई। कभी देख धूप में खड़े तन्हा शजर को, कभी देख धूप में खड़े तन्हा शजर को, ऐसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। एक पल में जो बर्बाद कर देते हैं दिल की बस्ती को फराज, एक पल में जो बर्बाद कर देते हैं दिल की बस्ती को फराज, वो लोग देखने में अक्सर मासूम होते हैं।

मेरी किस्मत में नहीं ये सुना है लोगों से ओ मेरी किस्मत में नहीं ये सुना है लोगों से फिर सोचता हूँ किस्मत तो खुदा लिखता है

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: ये न समझो कि हमें तुमसे मोहब्बत नहीं ये न समझो कि हमें तुमसे मोहब्बत नहीं हमें तो आदत है बस खामोश रहने की उसे तराशा कि हीरा बना दिया हमने फराज उसे तराशा के हीरा बना दिया हमने फराज मगर अब ये

लगा था तीर तब इतना दर्द ना हुआ उमर जब लगा था तीर तब इतना दर्द ना हुआ उमर जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में घर बनाकर मेरे दिल में वो छोड़ गया घर बनाकर मेरे दिल में वो छोड़ गया न खुद रहता है और न किसी और को बसने देता है तो ये समीन प्यारा

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: उम्मीद करते हैं खूबसूरत शायरी के साथ खूबसूरत नगमे भी आपको पसंद आ रहे होंगे. बहुत ही खूबसूरत अहमद फराज का लिखा हुआ शेर, किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर.
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL. बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी. दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए.
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार.
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान.
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए.
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान.
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442.
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स. अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ.
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है.
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी. नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम. लेडी स्टाफ
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. सोफी ज्वेलर्स. ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा.
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे.
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार.
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर.
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत. आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
7: UK. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99.
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स।

बहुत ही पुराना बहुत ही प्यारा शेर ये फखर तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं ये फखर तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं।

गामजन थे हम उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी गामजन थे हम मुझे रोक रोक कर पूछा तेरा हम सफर कहाँ है

होती है मोहब्बत में कुछ राज की बातें, होती है मोहब्बत में कुछ राज की बातें, ऐसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। तो ये समीन खूबसूरत

0: इस नगमे को आपने पसंद किया होगा। प्रोग्राम सामीन सुनते रहिएगा एशियन रेडियो लाइव महमूद के संग खूबसूरत शायरी आपके लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली बार, जब तक के लिए अलविदा।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
5: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।

0: Welcome.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: International radio channel, Asian Radio Live. Guldasta is presented by Hissam Muqaddam.
6: International channel, Asian Radio Live, ke samayin ki khidmat mein Hissam Muqaddam आदाब बजा लाते हैं गुलदस्ता प्रोग्राम लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सबको हमारा प्यार भरा सलाम जिंदगी सुख दुख के दो पहलू हैं जिंदगी सुख दुख के दो पहलू हैं रात भी सुबह का ऐलान करती

पूरी का कलाम पंकज उदास अपनी सुरीली आवाज में आप तक पहुंचा रहे थे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म कुदरत। वो लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत बख्शा है आर डी।

0: are listening to Guldasta on Asian Radio Live.
1: फिल्म कुदरत का ये गीत मोहम्मद रफी आपकी खदमत में पेश कर रहे थे। आइए अब पेश खदमत है मुकेश और आशा की आवाज में फिल्म रफ्तार का ये गीत। संगीत बख्शाए सोनी कोमी ने, इसे लिखा है अभिलाष ने। संसार ही एक दुनिया, दुख सुख दो।

तार का गीत आशा और मुकेश की आवाज में आपकी खिदमत में ग्लोबल चैनल इंटरनेशनल चैनल एशियन रेडियो लाइव के जरिए आप तक पहुंचाया गया गुलदस्ते के रूप में, जिसे हिसाम मुकदम पेश कर रहे हैं। हमसे रब्ता कायम करना हो तो ईमेल कीजिएगा hisam@asianradiolive.com। अब हाजिर है एक राम भजन फिल्म गोपी से लिया गया ये नगमा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज पे राजेंद्र कृष्ण का कलाम है। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। मोहम्मद रफी साहब।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स।

इस मराठी गीत के बाद अब पेश है फिल्म मदर इंडिया से शमशाद बेगम, मन्ना दे, रफी और साथियों की आवाजों में दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। शकील बदायनी का कलाम, नौशाद का संगीत।

फिल्म मदर इंडिया के बाद अब पेश है कुमार सानू की आवाज में कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख

दोस्तों आइए सुनते हैं एक कोमल गीत। लता जी की आवाज, फिल्म का नाम है परछाई। नूर लखनवी का कलाम है, वी शांताराम की ये फिल्म है। कटते हैं दुख में ए दिन,

अब पेशे लता जी की आवाज में फिल्म राम लखन से गीत आनंद बख्शी कलाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बड़ा दुख

0: Sameen.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवीज।
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

तेरी बेदार सुन, गम पे गम देने लगे घर के दरो दीवार सुन, छोड़ अब तकरार तारीफ लबो रुखसार सुन, बैठ मेरे रूबरू मुझसे नए अशआर सुन, आहें भर भर के दिए

राहत फतेह अली और महविश हयात को सुना। उम्मीद है कि आप सबने इस नगमे को पसंद किया होगा। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। समीन, आज भी मैं सेहत के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके अलावा तंज़ो मिज़ा और शेर व शायरी का सिलसिला प्रोग्राम में जारी रहेगा। हम सिलसिले जो वफा के रखते हैं तो हौसले भी इंतहा के रखते हैं। हम कभी बद दुआ नहीं देते, हम सिली के दुआ के रखते हैं। उनके दामन भी जलते देखे हैं, वो जो दामन बचा के रखते हैं। हम नहीं हैं शिकस्त के कायल, हम सफीने जला के रखते हैं। जिसको जाना है वो चला जाए, हम दिए सब बुझा के रखते हैं। हम भी कितने अजीब हैं दोस्त, दर्द को दिल में छुपा के रखते हैं। समय, अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ। इसको फिल्म ताजमहल से लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये नगमा है और इस नगमे को हम फरहीन आपके लिए पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए फरहीन, आपके लिए लता और मोहम्मद।

Ifat Hamid on Bradford Asian Radio. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. खूबसूरत आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म ताजमहल में फरहीन की पसंद पर ये नगमा पेश किया गया प्रोग्राम रंग तिरंग में. समय एक साहब दफ्तर में तरक्की पाकर अफसर बन गए तो अगले दिन ही ऑफिस के दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड आवेजा कर दिया जिसे पढ़कर पूरे स्टाफ की जान ही निकल गई. लिखा था यहाँ मैं बॉस हूँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा हमेशा याद रखना और अपनी औकात में रहना. अगले दिन बॉस बाथरूम गए वापस अपने कमरे में दाखिल हुए तो मेज पर एक कागज पर पैगाम लिखा मिला कि आपके घर से आपकी बेगम का फोन आया था पैगाम दिया है कि किचन के दरवाजे से जो बोर्ड उतार के ले गए हो वो शराफत से वापस ले आना. बहुत खूब सामने ऐसा भी होता उल्फत की नई मंजिल को चला. मोहम्मद अजीम आपकी पसंद पर राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये नगमा पेश कर रहे हैं.

इस रुए जमीन पर जन जर और जमीन के बाद जिस चीज पर झगड़ा होता है वो कुर्सी है। कुर्सी चाहे स्टील की हो या लकड़ी की, सदारत वजारत की हो या किसी और आला ओहदे की, हर तरह की कुर्सी निहायत अहमियत की हामिल है और हर कोई इसे हर कीमत पर हासिल करने की जुस्तजू में लगा रहता है। कुर्सी का दूसरा महज़ब नाम सीट है। सीट चाहे किसी ट्रेन, गाड़ी या हवाई जहाज की हो या काउंसलर, नाजिम या नायब नाजिम की हो, हर जगह की सीट को हासिल करने के लिए जगह जगह लोग कतारों में नजर आते हैं। खसूसन इलेक्शन के दौरान इसकी अहमियत दोचंद हो जाती है। कुर्सी या सीट हासिल करने वाला इसे हासिल करने के बाद दूसरे को हकीर और खुद को सुपरमैन समझने लगता है। माना कि कुर्सी हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर दुश्वारी उसकी हिफाजत करना है। जो हिफाजत करना जानते हैं उन्हें तो दौलत शोहरत के अलावा इज्जत को भी दांव पर लगाते हुए देखा गया है। बात यहीं पर ख़त्म जो है वो नहीं होती। वो अपनी और अपने अहले खाना की जानों को भी इसी कुर्सी पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सद अफसोस कि इस कुर्सी में वफा नहीं। इतना सब कुछ कुर्बान कर देने के बावजूद वो थोड़े ही अरसे के बाद कुर्सी नज़र आती है, लेकिन इंसान फिर भी उस कुर्सी से वफा की उम्मीद लगाए उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। तो मतलब ये है कि कुर्सी जो है वो कभी भी आपके नीचे से सरक सकती है, तो इसलिए उस कुर्सी पर अपने प्यारों की जानों को कुर्बान मत कीजिए। सामेन साथ देते रहेगा। रंग तरंग प्रोग्राम इस वक्त आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से सुन रहे हैं और यही प्रोग्राम एशियन रेडियो लाइव से भी आप सुन सकते हैं। सामेन साथ मेरा निभाते रहेगा। इफ़त हमीद के साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं सामेन अगले नगमे की तरफ। कुमार सानू की आवाज़ में इस नगमे को लिया है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। साजन फिल्म का ये नगमा हम पेश कर रहे हैं इस वक्त उस्मा जमात आपके लिए। प्रोग्राम आप शौक से सुनती हैं, पसंद करती हैं बहुत।

सानू की आवाज में साजन फिल्म का ये नगमा उस्मान जला आपके लिए हमने पेश किया। समय साथ मेरा निभाते रहेगा। रंग रंग प्रोग्राम इफ़त हमीद के साथ आप सुन रहे हैं। एक शख्स जो है वो अपना मोबाइल रख कर तो किसी काम के सिलसिले में दूसरे कमरे में गया, तो बीवी ने शौहर का मोबाइल चेक किया तो उसे तीन नहायत मशकूक नाम नजर आए। नंबर एक नज़ाकत वाली, नंबर दो नाम था भोली भाली के नाम से, और नंबर तीन सपनों की शहजादी से ये नाम उस पर सेव था। जाहिर है ये देखकर बीवी का पारा गुस्से और दुख से ऊपर चला गया। उसने फौरी तौर पर पहला नंबर मिलाया तो दूसरी जानिब से उसकी अम्मी यानी शौहर की सास ने जवाब दिया। फिर इसने दूसरा नंबर मिलाया जो भोली भाली के नाम से सेव था तो दूसरी जानिब उसकी 8 साल छोटी बहन ने जवाब दिया। जब इसने हैरत से तीसरा नंबर मिलाया जो सपनों की शहजादी के नाम से था तो उसका अपना फ़ोन बज उठा। बीवी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम शौहर के किरदार पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे शौहर को अपनी पिछले माह की तनख्वाह तोहफे में दे दी। शौहर ने उसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में बशीर इलेक्ट्रिशियन के नाम से सेव किया हुआ था। मासूम शौहर क्या ऐसे होते हैं? बाहर चलते हैं, ये तो तंजो मिजाज की बात थी। अगले नगमे की तरफ सामिन, और इस नगमे को हमने उर्वा आपके लिए जो है ये पेश करूँगी मैं। उर्वा आपने भी प्रोग्राम को सुना, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जो है ना फिल्म आखिर क्यों से लता मंगेशकर की आवाज़ में इस नगमे को सुनने की फरमाइश आपने की थी। तो लीजिए उर्वा आपके लिए, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर।

0: listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
9: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
5: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
8: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज,

ये थे मोहम्मद रफी फिल्म लोफर में। समय कुछ और अच्छी बातें आपके लिए। तंगो तारीख रास्तों से गुजरने के बाद ही कुशादा और हमवार रास्तों की कदर होती है। सख्त गर्मी और लू के थपेड़े खाने के बाद सायादार दरख्त की छांव दिल को सुकून देती है। तारीख और गहरी रात काटने के बाद ही सुबह की पहली किरण का उजाला जिंदगी को खुशी और उम्मीद की किरणों से भर देता है। सहरा में प्यासा सफर करने के बाद पानी का एक कतरा जो जुबान को तर कर देता है बहुत मीठा लगता है। एक अरसा दश्ते तन्हाई में गुजारने के बाद दिल के बंद दरवाजे पर किसी का दस्तक देना बागों में फूल खिलाने के मुतरादिफ होता है। और अगर जिंदगी का हम सफर आपसे मुखलिस हो तो वही जीने की असली वजह बन जाता है। बिल्कुल सही कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और भी याद आ जाता है। फिल्म प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का नगमा शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में मोहम्मद अनवर आपकी पसंद पर पेश किया जा रहा है।

अभी आपने खूबसूरत नगमा आपने सुना शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मेरी आंखों में ख्वाब उतरा है, फिर नया महताब उतरा है, मौसमों पर निखार है ताज़ा, तुम पे कैसा शबाब उतरा है, जिंदगी को दुखों ने घेरा है जैसे कोई अजाब उतरा है, चांदनी दूर तक नजर आई जब भी मुख से नकाब उतरा है, चिराग बुझ गए वो जिनकी आंखों के, अब उनके वास्ते ताज़ा निसा उतरा है। अब चलते हैं सामने नकले नगमे की तरफ, और ये खूबसूरत नगमा जो है इसको मैंने लिया है फिल्म तेजाब से, अलका याग्निक और शबीर कुमार की आवाज़ में ये नगमा है, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, नदीम अलवी,

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबी कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज,

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म बुड्ढा मिल गया में। कुछ और तंजोमिजा की बात करते हैं। खातून खाना ने दूध वाले से शिकायत की कि वो काफी दिनों से बहुत पतला दूध ला रहा है। बातूनी और चर्प जुबान दूध वाले ने अपने बहुत से पेशावराना मसाइल बयान किए, फिर बोला बेचारी भैंसों को खाने के लिए अच्छी घास तो मिल नहीं रही, फिर वो अच्छा दूध कैसे दे सकती हैं, वो तो अपने दूध के मयार पर खुद बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। आप शायद यकीन ना करें कि वो दूध देते वक्त आठ आठ आंसू रोती हैं। अच्छा, मगर तुम इतनी कोशिश जरूर किया करो कि उनके आंसू दूध की बाल्टी में ना गिरें, खातून खाना ने गुजारिश की। बहुत खूब सामीन। चलते हैं अब अगले नगमे की तरफ। महपारा, आपकी पसंद पर यह नगमा फिल्म याराना से मैं पेश कर रही हूँ। किशोर कुमार की आवाज़, 1981 में अमिताभ बच्चन की फिल्म। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

अगर अभी भी आपने शिरकत की है तो इस वक्त आप रंग रंग प्रोग्राम इफ़त हमीद के साथ सुन रहे हैं। एक बंदर इंसानों की आबादी में निकल आया और वहाँ रहने वालों की बूदोबाश देखी, कुछ अरसे कयाम किया और फिर अपने घर की राह ली। अपनी बरादरी में पहुंचा तो जंगल के सारे बंदरों ने उससे कहा, इंसानों की आबादी में इतना वक्त गुजार कर आए हो, कुछ हमें भी रुदात सुनाओ कि वहाँ की जिंदगी कैसी है और लोग क्या करते हैं। शहर से आने वाले बंदर ने बताया, मैंने वहाँ एक अजीब जानवर देखा है, इसके बीवी बच्चे भी थे। वो सुबह रोजी की तलाश में निकलता और रात को वापस आता, मगर जैसे ही घर में दाखिल होता उसकी बेगम खू खू करती हुई उसके पीछे पड़ जाती और झगड़ती रहती। सुबह को वो जानवर फिर चला जाता और रात को लौट आता, उसकी बेगम फिर उसके पीछे पड़ जाती। बंदरों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। एक बंदर ने पूछा, क्या उसकी बेगम ने उसके गले में रस्सी डाल रखी थी जो वो रोजाना की लड़ाई झगड़े के बावजूद रात को वापस आ जाता था? नहीं, उसके गले में कोई रस्सी नहीं होती थी, बस किस्मत का मारा खुद ही वापस आ जाता था। शहर से आने वाले बंदर ने भी हैरत का इजहार किया। बहुत खूब सामिन, धीरे धीरे चल चांद गगन में लता और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी, फिल्म लव मैरिज में।

0: Saad Hamid
1: and Bradford Asian Radio.
2: Yeah. Yeti Mohammed Rafi aur unka saath de rahi thi Lata Mangeshkar. एक हसीन और जमील सेक्रेटरी गुस्से से भरी बॉस के कमरे से बाहर निकली तो उसकी साथी वर्कर ने पूछा, जब तुम साहब के कमरे में गई थी तो बड़े खुशगवार मूड में थी, अब गुस्से के आलम में बाहर आई हो, क्या बात है? सेक्रेटरी ने नाक सुकेरते हुए जवाब दिया, उसने मुझसे पूछा था कि क्या अब तुम्हें फुर्सत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर फुर्सत ही फुर्सत है. मेरा जवाब सुनकर उसने मुझे 20 सफात टाइप करने को दे दिए हैं. फरेबी कहीं का ये बात थी. इसी तरह सास भी कभी बहू थी. नई नवेली बहू शादी के दूसरे रोज अपनी सास के सामने मकान की दीवार फांद कर बाहर गई. दूसरी तरफ उसका आशना खड़ा था, मगर ये मंजर देखकर सास ने बहू का रास्ता नहीं रोका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. बहुत खूब सामिन चलते हैं. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के इस नगमे की तरफ, और इस नगमे को हमने खुर्शीद साहब आपकी पसंद पर जो है ये सुनवाऊंगी. मैं प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली.

फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़िका ये नगमा आप सुन रहे थे। किसी को मत चाहो आगाज़े सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक अदा तंग करेगी। दर्द रुक रुक के चलता है, करार थम थम के आता है, कुछ ऐसी आग लगी कि सांस भी कम आता है। पढ़ तो लिया है इसको मगर कैसे फेंक दूँ, खुशबू तुम्हारे हाथों की इन कागज़ों में है। कुछ लोग दौलत की खातिर अपना माजी भूल जाते हैं, लगा कर दिल औरों से अपनों को भूल जाते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। कुमार सानू और अनुराधा की आवाज़ में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये नगमा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सामिन आप सब ये नगमा सुने और मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सब ने पसंद किया होगा। खुश रहिए, खुश रखिए, आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।

0: So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

जगजीत सिंह साहब की गाय हुई गुजराती में अरदास के बाद, अब एक अनमोल तोहफा राजा मेहदी अली खान साहब की कलम से निकला हुआ फिल्म अनपढ़ के लिए मदन मोहन की धुन, आपकी नजरों ने समझा प्यार।

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop, or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Dosto, ab baari hai. Asha Bhosle aur film ka naam hai Bahare Phir Bhi Aayengi. संगीत बख्शा है ओपी नैयर ने कलाम अनजान का है वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे बेकारी उल्फत का इजहार समझ बैठे

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
5: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
8: saferaider.co.uk UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज।
3: समीर खान और आशा भोसले की आवाज़ में कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।

मुकेश, शारदा और सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज में फिल्म पहचान से गीत इसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत बख्शा है शंकर जय कृष्ण ने। गंगा राम की समझ में न आई।

आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण के गजल से की हुई ये गजल। संगीत बख्शाए सलील चौधरी ने इसे गा रहे हैं तरत महमूद। फिल्म का नाम है छाया। आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तूने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। तलत महमूद साहब।

लीजिए पेश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हेरोइन एक रात की से शिवाजी घनश्याम की तर्ज पे साजन दहलवी का कलाम। ये क्या जिंदगी है समझ में ना आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहम्मद रफी।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أكبر. أشهد أن لا

0: 70s.
1: 30 Wetley Hill, Bradford, BD8, 8NG. Phone 01274-477-257.
0: Dubai Jewelers.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548-419-678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online.
1: Aur kaya agni ki awaaz mein anand bakhshi ka kalam film thi zakhm sangeet bakhsha tha MM Kareem ne ab pesh khidmat hai Amitabh Bachchan aur Mukesh ki awaaz mein Sahar saab ka kalam film ka naam hai Kabhi Kabhi iski tarz Ravi ne tarteeb di hai main do pal ka shair hoon pal do pal meri जवानी है पल दो पर मेरी हस्ती है पल दो पर मेरी कहानी है
2: कल नई कोंपलें फूटेंगी कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे वो मेरे बीच नहीं आए बीच नहीं आए मैं उनके बीच में क्यों आऊं उनकी सुबहों और शामों का उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं मैं पल दो पल का शायर हूं पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है

कभी कभी से साहर साहब का कलाम कभी आपने मुकेश की आवाज में सुना। अगली गजल हम जनाब मुनीर सुबेदार और सुबेदार कुंभे के लिए डेडिकेट करते हैं यहाँ लिस्ट में। और यही दिलकश गजल हम नन्ही मुन्ने फरिश्ते खलील के पहले साल की राह के मौके पर डेडिकेट किए देते हैं। मुकद्दम अनवरी नोरे और चरफरे फैमिलीज की तरफ से जुग जुग जो हजारों साल हर साल के दिनों 50,000 जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। उस्ताद मेहदी हसन साहब कतील शिफाई का कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।

0: Guzzles, Qawwalis. Classical music.
1: On Bradford Asian Radio.
2: Aglanagma. Amni ki asif ki film Mughal-e Azam se liya hai. Ga rahe hain Lata Mangeshkar. Kalam Shakil sahab ka hai. Aur sangeet baksha hai. Naushad Ali ji. Aye ishq ke sab duniya wale बेकार की बातें करते हैं पायल के गमों का इल्म नहीं जनकार की

दोस्तों, अब बारी है कलामे इकबाल की। बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी। शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, इसे ये गा रही है अपनी ये खूबसूरत अंदाज और आवाज में रीना रॉय।

0: Beaufort Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: प्रोग्राम के अगले पाए पे एसपी जोन की आवाज में फिल्म सवेरा से ली गई ये गजल, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हसी है।

आइए सुनते हैं ताजदार ताज साहब का कलाम, रत्नदीप हमीर की धुन और आवाज निहायत ही दिलकश अंदाज में मोहम्मद रफी साहब आप

जी अब गुलदस्ते में रुबाई का रंग शामिल हो जाता है। इसे जमीर काजमी ने लिखा है, मगर उमर खयाम की ही रुबाई है। गा रहे हैं पंकज उदास।

दोस्तों, अगला गीत हमने फिल्म खानदान से लिया है, जिसे नक्श लाल पूरी ने लिखा और खयाम साहब ने इसकी खूबसूरत मौसीकी तैयार की है। गा रही लता मंगेशकर, ये मुलाकात एक बहाना है।

फिल्म आह से लिया गया है। गीत मुकेश साहब गा रहे हैं, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई है और शैलेंद्र का कलाम है। छोटी सी ये जिंदगानी, चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय, गम की कहानी तेरी, स्वर्गीय

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
5: दुबई ज्वेलर्स।

0: 14 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। महमूद रिजवीज।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 14:13 AM and online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM.
8: If Rider, call today at 01274-201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
0: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
11: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
0: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
11: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
0: 07548419678।
11: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
5: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

जैसा मैंने आपको गजल सुना रहे थे जनाब नासर जैदी की, कि थोड़ा सा मुस्कुरा के निगाहें मिलाइए, मुझको मेरी हयात का मकसद बताइए, मुझसे भी कुछ हुजूर ताल्लुक था आपका, मुझसे भी कुछ हुजूर ताल्लुक था आपका, क्यों बेमुरवती से ना दामन छुड़ाइए, शायद किसी मकाम पे मैं काम आ सकूं, शायद किसी मकाम पे मैं काम आ सकूं, मुझको भी साथ लीजिए तन्हा ना जाइए, गुजरेगा इस तरह से भी कुछ एक दिन हजूम गुल, गुजरेगा इस तरफ से भी एक दिन हजूम गुल, हर चंद आप राह में कांटे बिछाइए, नासर उदासियां तो रहेंगे यूं ही मदाम, नासर उदासियां तो रहेंगी यूं ही मदाम, चलने लगी है रात कोई गीत गाइए।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक, अपने वक्त का सदाबहार गीत। शायरी थी मजरू सुल्तानपुरी की, और शायरी थी मजरू सुल्तानपुरी की, मौसीकी थी आनंद मिलंद की, आवाज़ थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। है मेरे हम सफर, उम्मीद करते हैं कि ये गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। और आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए हम एक सरप्राइज भी लाए हैं, सरप्राइज गेस्ट, थोड़ी देर में इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आज मौसम की अगर बात करें तो खूबसूरत मौसम है, ऐसा मौसम यूके में कहाँ मिलता है, क्या ख्याल है आपका? और पहली बार थोड़ा सा स्टूडियो में एहसास हो रहा है कि थोड़ी सी जैसे तमाजत है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम को हमने खूबसूरत गीतों से सजाया है। उम्मीद करूंगा कि आज के ये गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आएंगे, लेकिन अगर आपका कोई चॉइस हो तो भी आप बता सकते हैं, स्टूडियो का नंबर मिला सकते हैं 00447-800-599-563, या फिर स्टूडियो का लैंडलाइन नंबर है 01274-306-677। और आइए अब आज के इस प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गीत शामिल करते हैं। बख्शे फिर उस निगाह ने अरमान नए नए, बख्शे फिर उस निगाह ने अरमान नए नए, महसूस हो रहे हैं दिलो जान नए नए, बख्शे फिर उस निगाह ने अरमान नए नए, महसूस हो रहे हैं दिलो जान नए नए। यूं कह दे जिंदगी ने रखा इस्तराब हमें, यूं कह दे जिंदगी ने रखा मुस्तरिब हमें, यूं कह दे जिंदगी ने रखा मुस्तरिब हमें, जैसे हुए हूँ दाखिल जिंदा नए नए। यूं कह दे जिंदगी ने रखा मुस्तरिब हमें, जैसे हुए हूँ दाखिल जिंदा नए नए, किस किस से इस अमानत दीन को बचाइए, किस किस से इस अमानत दीन को बचाइए, मिलते हैं रोज दुश्मन ईमान नए नए, किस किस से इस अमानत दीन को बचाइए, मिलते हैं रोज दुश्मन ईमान नए नए। राहत की जुस्तजू में खुशी की तलाश में, राहत की जुस्तजू में खुशी की तलाश में, गम पालती है उम्रे गुरेजा नए नए, राहत की जुस्तजू में खुशी की तलाश में, गम पालती है उम्रे गुरेजा नए नए।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
10: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
10: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
10: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
9: UK
11: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
11: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Footlane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
13: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
12: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिंगम सुपरस्टोर मेनिंगम सुपरस्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX ऑन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
13: मेनिंगम सुपरस्टोर
9: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
14: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
14: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
15: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि
16: आज You're listening to Bradford Asian Radio

और सामिन, हुआ कुछ यूँ कि हमने घड़ी नहीं देखी, जिसकी वजह से हमारा जो गीत था, हमने गीत तो लगाया लेकिन साथ ही हो गया था वक्त ब्रेक का और हमें ब्रेक पे लाजमी जाना था। तो आप यूँ करते हैं कि उस गीत को जिसका हमने सिलसिला शुरू किया था एक बार फिर नए सिरे से उसे लगाते हैं और करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम पसंद आपकी पेशकश आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की।

और अजी सामिन, जिंदगी में कुछ सरप्राइजेस भी होते हैं। और इसी तरह आज आपके लिए एक सरप्राइज है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलिया, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आज पहली बार हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं। बहुत अच्छी वकील भी हैं और वकीलों के हवाले से मेरे जहन में अशआर तो बेशुमार हैं, लेकिन इस वक्त सुनाऊंगा नहीं। स्पेशली आप जानते हैं अकबर इलाहाबादी की कितने प्यारे प्यारे अशआर हैं वकला की शान में, लेकिन आज हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे वो अशआर, बल्कि आज हम इनसे अशआर सुनेंगे। जी हाँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनका शेरी ज़ौक बहुत अच्छा है, शायरी बहुत अच्छी पढ़ती हैं सुनाती हैं, और ये मुझे नहीं पता कि शायद खुद लिखती भी हूँ, क्या पता। लेकिन परवीन शाकर की बात जहन में हमेशा रहती है कि अगर आपको शेर व शायरी का शौक़ है तो पहले दूसरों को पढ़ना सीखो और उसके बाद लिखना, क्योंकि फिर आपकी लिखाई में पुख्तगी आएगी, अदूए तखयल आएगा, और फिर आपकी शायरी लोगों के दिलों पे असर करेगी। वो शायरी ही क्या कि जो बस सतईसी हो और इधर से सुनी और उधर से गई। बोले शायर कि लोग तफरी का सामान समझते हैं हमें, लोग तफरी का सामान समझते हैं हमें, हम गमे जिस्त मिटाते हैं गजल खां होकर। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है आप? खैरियत से हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं अभी चेक करता हूँ कि क्यों।

0: जी हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आलिया, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हैर आफियत।
0: आज ब्रेडफ्रूट का मौसम आपको कैसा लग रहा है?
1: आज क्या, पिछले दो दिनों से बहुत सुहाना मौसम था, धूप के साथ साथ हवाओं की हलचल भी बहुत अच्छी थी कि दिल चाहता था कि इस हवा में झूमा जाए, घूमा जाए। लेकिन ब्रेडफ्रूट का माहौल भी कुछ ऐसा है या फिर परदेश का माहौल भी कुछ ऐसा है कि इंसान को फुर्सत नहीं मिलती है कि फिर हवाओं में झूमा जाए, फिर कामों में झूमना ज़्यादा मुनासिब लगता है।
0: बिल्कुल यही है, कहते हैं ना कि सीखी नई ज़ुबान वतन से जुदा हुए, सीखी नई ज़ुबान वतन से जुदा हुए, जीने की दौड़ धूप में हम क्या से क्या हुए।
1: क्या कहने,
0: सही से। तो आप कोई गजल सुनाना जा रही थी, तो सुनाइएगा कौन सी गजल है आज सुनने वालों के नाम करेंगी आज?
1: बिल्कुल, मैं आज जवाद शेख की एक गजल सुनाना चाहूंगी आपको।
0: ये नए शायर हैं गालिबन?
1: बिल्कुल, ये
0: नाम
1: नए शायर
0: सुना पहले। जी जी।
1: और शायर एक शायर ही होता है क्योंकि वो अपने तजर्बात से वो कुछ महसूस करके लिख पाता है जो शायद एक आम इंसान ना महसूस कर सकता है ना फिर उस पर लिख पाता है।
0: बिल्कुल,
1: शायद महसूस करना आसान होता है लेकिन उस पर अपने एहसास को, जज्बात को एक्सप्लेन करना या तफसील बयान करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: और रूज वो मंतक पे पूरा उतरते हुए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप बेशक आपने मास्टर्स किया उर्दू में लेकिन हो सकता है कि आपके पास वो शेरी जोक ना हो और आप एक एक मिसरा भी मौजू ना कर सकें, और हो सकता है कि एक कोई मैट्रिक भी ना हो तो आपसे दूर अच्छा शायर हो। क्योंकि या इंसान शायर होता है या नहीं होता, सच तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता।
1: या नहीं होता, क्या कहने, क्या कहने।
0: आप सुनाइए।
1: तो ये जवाद शेख साहब की गजल है, कहते हैं कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं,
0: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, वाह वाह।
1: लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह वाह वाह।
1: कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर,
0: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर,
1: इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ
0: क्या
1: भी नहीं।
0: कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत।
1: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। और मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता,
0: मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता,
1: या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, फिर से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। क्या कहने,
1: कि मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर
0: सकता,
1: या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने,
1: और कैसे जाना है,
0: वाह वाह,
1: कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है,
0: कैसे जाना है, कहाँ जाना है,
1: क्यों जाना,
0: क्यों
1: है?
0: जाना है,
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, सहले ममतने इसे कहते हैं कि यूं लगे कि हम ऐसा लिख सकेंगे लेकिन लिख नहीं पाते।
1: बेशक
0: बेशक।
1: और हाय हाय इस शहर की रौनक के मैं सदके जाऊं,
0: हाय हाय हाय हाय इस शहर की रौनक के मैं सदके जाऊं,
1: ऐसी भरपूर है जैसे हुआ कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है।
1: और फिर कोई ताज़ा सुखन दिल में जगा करता है,
0: फिर कोई ताज़ा सुखन दिल में जगा करता है,
1: जब भी लगता है कि लिखने को बचा कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, खूबसूरत है।
1: और अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं,
0: अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं,
1: मान लेता हूं कि उस शख्स में था कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, क्या लाजवाब है, क्या कहने आपके शेरी ज़ौक के, जबरदस्त जबरदस्त।
1: कि अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूं कि उस शख्स में था
0: कुछ भी नहीं,
1: मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा है जवाब,
0: आहा, मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा है जवाब,
1: मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा है जवाद, ऐसी मूझ और उदासी की दुआ कुछ भी नहीं।
0: क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि ये अख्तर शुमार के रंग में बड़ा लिखते हैं, क्योंकि अख्तर शुमार की वो जो गजल है कि अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं,
1: मिटी जाती है तसलसल,
0: उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: और मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं।
1: क्या कहने,
0: अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी
1: नहीं, भी नहीं।
0: उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं।
1: क्या कहते,
0: और अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں. اختر شمار کی پہچان غزل ہے, تو اس کے بڑی کلوز لکھا ہے, لیکن ماشاء اللہ کسی بڑے شاعر کی زمین میں لکھنا ایزی نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر اس میں شاعری میں دم کم ہو تو چاشنی بڑھ جاتی ہے. کیا
1: پتہ کیا لکھنے والے بھی لکھ دیتے ہیں.
0: آپ کو شاعری ذوق کیسے ہوا ذرا بتانا پسند کریں گے اگر.
1: شاعری ذوق کے لیے مجھے لگتا ہے نہ یہ عمر کا تقاضا ہوتی ہے اور نہ یہ آپ کی پڑھائی, یا آپ بولیں کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ایک انسان ہوں یا میں بہت ایجوکیٹڈ, میں نے یہاں سے یہاں سے یہاں سے تعلیمی ذوق میرا زیادہ ہے, تو شاعری کا ذوق ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ آپ جب اس شاعری کو سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے. اور میرے ساتھ ایسے معاملات جب میں ایسا نہیں بولوں گی کہ اچھا ایک بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں.
0: وہ تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے.
1: کیا کہیں, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں, میں جس پلیٹ فارم پہ بھی پڑھتی ہوں, تو مجھے سننے والے سمجھتے ہیں کہ یار اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اس کو کسی مرد کی نا محبت کا غم لگا ہوا ہے. تو میں جواب ہمیشہ ہر ایک کو یہ دیتی ہوں کہ دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے غم کے سوا,
0: اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے
1: سوا, دنیا میں اور بھی راحتیں ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو اگر ہم جو ہے وہ اس شاعری کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہم اس کا انداز بیان رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غم ہمیں ایسا ہی ہے. کیا پتہ زندگی میں کتنے غم ہوتے ہیں جو ہمیں اس طرف لے آتے ہیں. تو میری زندگی میں بہت سارے ایسے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جو مجھے اس طرف لے آئے, اور میں یہ میرا ذوق بھی ہے, میری پسند بھی ہے, میری خواہش بھی ہے, جبکہ میری زندگی میں شاید کبھی اس کی جگہ نہیں تھی. اب اس کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ, ایک جگہ ہے, اور میں بڑے عزت سے اس کو دیکھتی ہوں, اور میں بڑے پیار سے اس کو پڑھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جیسے میں بول رہی ہوں مجھے سننے والے ویسے ہی لے رہے ہوں, جیسے ایک لکھنے والے کو میں بول رہی ہوں ویسے مجھے سننے والے لے رہے ہوں, تو وہ پیغام پورا ہو جائے گا.
0: شاعری پروان چڑھتی ہے جگر کے خون سے, شاعری پروان چڑھتی ہے جگر کے خون سے, جب کبھی ٹوٹے گا دل خود شاعری آ جائے گی.
1: ہاں کیا کہنے, بہت
0: یوں کہتے ہیں کہ ایک گیت سنتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور سننے والوں سے بھی التماس ہے کہ اگر آج کے اس پروگرام میں تشریف لانا چاہیں تو آپ کال ملا سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں 01274306677. آئیے ایک خوبصورت گیت کو آج کے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اور پھر ہماری بات چیت عالیہ سے جاری رہے گی. ان شاء اللہ آپ ان کی آواز بھی یہاں پہ ضرور سنا کریں گے بریڈ فاؤنڈیشن ریڈیو پہ. آئیے تو ایک گیت آج کے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں.

0: और समीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की, फिल्म का नाम था आदमी खिलौना है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब रुखसार चौधरी साहब, आपने हमें याद किया मैनचेस्टर से, बेहद शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश आपने हमें भी, और जो हमारी आज की मेहमान है आज के इस प्रोग्राम में आलिया, उन्हें भी आपने खुश आमदेद कहा है, उनकी शायरी आपने पसंद की है, बेहद शुक्रिया आपका। यकीनन आज के इस प्रोग्राम में हमारा वो अगले हिस्से में भी साथ देंगी, उनसे और भी हम शायरी सुनेंगे। वैसे एलिजोक बहुत कम कम बंदे मिलते हैं, हम लकी हैं कि माशाल्लाह आज स्टूडियो में इतनी जोक के सलीम रखने वाली हमारे सामने मौजूद हैं, ज़रूर इन्हें हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी लेंगे। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात।
1: मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
2: Medium Wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
4: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में।
4: आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा।

0: जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
1: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
0: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
1: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास?
0: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
1: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है,
0: ग्रिल इंडो चाइनीज फूड के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
1: और हाँ, सेकंड वाइफ के हाथों बने डिजर्ट जरूर चखिएगा।
0: सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, 78 लिली क्रॉफ्ट रोड, BD9 5AB, फोन ब्रेडफोर्ड 2020 00।

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल के दूसरे हिस्से में खुश आमदेद कहते हैं हम। और अगर अभी अभी आपने हमारी ये नशियात सुनना शुरू की हूँ तो आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। वेब के साथ साथ ये नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं जी, एंड डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और फिर डिजिटल साउंड में आप हमारी ये नशियात ब्रेडफोर्ड और इसके गिरदोनवा में सुन सकते हैं। यही नशियात अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त और आपकी ज़्यादा फ़ोन की मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और हमारी इस वक्त की नशियात आप शेफील्ड में लिंक FM के ज़रिए भी सुन रहे हैं और शेफील्ड और रादरम के डेप प्लस पे भी ये नशियात इस वक्त पेश की जा रही हैं। आप इस वक्त चाहे जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हों, आप सभी को आज की इस बज़्म में खुश आमदेद। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम का जो दूसरा दौर होता है, दूसरा हिस्सा होता है, इसमें आप सुनने वालों की लाइव कॉल्स होती हैं जिसमें आप आते हैं, अपने शेरी शौक का मुजाहरा करते हैं, अशार सुनाते हैं, गीत गाते हैं और आपसे हमारी गपशप रहती है। ये हजूम शहर सितमगरां न सुनेगा तेरी सदा कभी, ये हजूम शहर सितमगरां न सुनेगा तेरी सदा कभी, मेरी धड़कनों को सुखन सुना, मेरी ख्वाहिशों से खिताब कर। और अब यही खिताब करने के लिए हमारे बहुत ही रेगुलर सामे जनाब शकील साहब तशरीफ फरमा हैं जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जनाब शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
1: जी हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है।
0: जी जी, आपको खुश आमदेद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप?
1: आपकी दुआएं, आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत।
1: तो तमाम सुनने वालों को मैं तहे से सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और आज हमारे साथ आलिया भी मौजूद है और बड़ी खूबसूरत शायरी इन्होंने सुनाई थी।
1: अगर सुन रहे हो, अली भाई हैं,
0: जी जी जी,
1: चौधरी जुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, अबू बलाई हैं,
0: जी जी,
1: उस्मान भाई हैं, हमारे जो मेहमान आए थे आपको,
0: जी जी, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आलिया, जी जी।
1: तो ये गजल है, ये लिखने वाले हैं नजाकतुल्लाह जान।
0: नजाकतुल्लाह जान जी, इनायत की
1: जी। खलूस व प्यार गर अहले वतन के दरमियां होता।
0: वाह वाह।
1: खलूस व प्यार गर अहले वतन के दरमियां होता, वतन में रहना हमको किस लिए बारे गिरा होता।
0: क्या कहने शकील साहब, वाह वाह, फिर से पढ़िए गमकर। वाह।
1: छुपा रखा अजल की आंख से इस नातवानी ने, वरना पैकरे खा के ये जन्नत आशियां होता।
0: बहुत अच्छे शकील साहब, वाह वाह।
1: फजीलत उसको करनी थी इंसान की वरना, फजीलत उसको करनी थी इंसान की वरना, रसूल आते न दुनिया में न सहरा गुलिस्तान होता।
0: बहुत अच्छे वाह वाह।
1: लुटा कर दौलते होशो खिर्द ये मुझा पाया, हमें ऐ काश कुछ अंदाज़ सूदो ज़िया होता।
0: बहुत अच्छे
1: बिसाते आशियां है बर क्या दो चार तिनके थे, बिसाते आशियां है बर क्या दो चार तिनके थे, मजा तो जब था तेरी इज्जत में सारा गुलिस्तान होता।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
1: अदालत में जरूरत ही न थी झूठी गवाही की,
0: अदालत में जरूरत ही न थी झूठी गवाही की,
1: अदालत में जरूरत ही न थी झूठी गवाही की, अगर जो खंजरे कातिल हकीकत की जबां होता।
0: बहुत खूब।
1: शुक्रिया। न करते नफरतों की तुखमरेजी हम अगर फैजी,
0: वाह वाह।
1: न करते नफरतों की तुखमरेजी हम अगर फैजी, तो ये वतन अपना भी जन्नत निशान होता।
0: क्या कहने।
1: शुक्रिया। तो ये गजल औरंगजेब की है, अगर इजाजत दे।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: अपने चाहने वालों पे बढ़ के खंजर तान लेती है।
0: आहा।
1: मोहब्बत में न पड़ जाना मोहब्बत जान लेती है।
0: क्या कहने शकील साहब, वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। उदासी आशना है इस कदर आहट से मेरी, अब जहां से भी गुजरता हूं मुझे पहचान लेती है। खुशी तो दे ही देती है तेरी दुनिया मुझे लाकर,
0: बाबा
1: खुशी तो दे ही देती है तेरी दुनिया मुझे लाकर, मगर बदले में वो इसके मेरा ईमान लेती है।
0: क्या कहने क्या कहने,
1: बस एक लम्हा लगाती है खुशी आकर गुजरने में, उदासी आए तो सदियों की मिट्टी छान लेती है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने,
1: बराबर बांट देती है वो सांसें खाक जादों में, न जाने जिंदगी किसकी दुकान से बान लेती है।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: उसी के साथ चलती है ये मंजिल तक पहुंचने तक, उसी के साथ चलती है ये मंजिल पर पहुंचने तक, ये राहे गम जिसे अपना मुसाफिर जान लेती है।
0: बहुत अच्छे शकील,
1: हम उसके हाथ पर रख दें जमीनों आसमां लाकर, मगर वो हम फकीरों का कहां एहसान लेती है।
0: बहुत अच्छे,
1: सरे मक्तल बिखर जाते हैं उसमें डूबने वाले, सरे मक्तल बिखर जाते हैं उसमें डूबने वाले, मोहब्बत हर कदम पर खून का तावान लेती है।
0: बहुत अच्छे हस्बे मामूल, बहुत ही खूबसूरत, वाह वाह।
1: सरे मक्तल बिखर जाते हैं उसमें डूबने वाले, मोहब्बत हर कदम पर खून का तावान लेती है। औरंगजेब आखिरी शेर कहते हैं, अगर बुझने से बचना है तो लो से लो जलाओ जेब, अगर बुझने से बचना है तो लो से लो जलाओ जेब, हवा जलते चिरागों से यही पैमान लेती
0: पैमान
1: है।
0: लेती है, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने,
1: मोहब्बत में न पड़ जाना मोहब्बत जान लेती है। तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए,
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना, बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आपके लिए बहुत सी तालियां, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया,
1: खुदा हाफिज।
0: और जी सामिन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, आलिया बताइएगा आपको उनकी शायरी कैसी लगी।
2: बहुत कमाल, मैं तो सोचती हूँ कि हमेशा काश कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत से निकल के भी सोचा जाए कि दुनिया के बहुत सारे हसीन रंग हैं।
0: बेशक बेशक,
2: और हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो फिर वो मकासद को शायद हम जाने बगैर इस प्यार मोहब्बत की दलदल में ऐसा फंस चुके हैं कि हमें हर शायरी प्यार मोहब्बत की शायरी लगती है।
0: क्या कहने,
2: जबकि कुछ हकीकी शायरी भी होती है जिसका ताल्लुक शायद इश्क मिजाजी के साथ भी होता है। फिर इस दुनिया में रहने वाले बहुत से हालात और वाकयात के साथ, जिस तरह भी उन्होंने बड़ी एक मुझे जो है वो दिल पे जाके लगी, उन्होंने परदेश के हवाले से कुछ बोला, तो ये परदेसी समझ सकते हैं।
0: मुझे वसी शाह का वो शेर याद आ गया कि सकूं उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, हाँ। जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता,
2: कुछ नहीं मिलता, क्या कहने।
0: वसी की बड़ी खूबसूरत है, वसी का यहाँ पे हमने प्रोग्राम भी करवाया था कई साल पहले ब्रेडफोर्ड में, वसी आए थे जनाब अमजद इस्लाम अमजद आए थे उनके एजाज में एक शाम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ने मुनाकिद की।
2: बहुत आला बहुत आला जी, तो माशाल्लाह
0: जी आप बात जारी रखिए,
2: तो मैं उनकी बस पोइट्री सुन के मैं भी एक बार दंग रह गई हूँ कि वो हर इंसान का इस शायरी को लेके जोक अलग है।
0: बिल्कुल,
2: कुछ लोगों को मोहब्बत इसकी शायरी पसंद होगी, कुछ लोग बड़ी हकीकत पसंद शायरी को पसंद करेंगे कि जो हम पढ़ें तो हम बोले हाँ ऐसा ही होता है, यही होता, तो वो हर इंसान का अपना मयार होता है, वो काबिले इज्जत है हमारे लिए, बहुत अच्छा अंदाज़ बयान, बहुत अच्छे अल्फाज, और अल्फाज का चुनाव सबसे पहले करना ये सबसे अहम बात है कि आप जो वक्त लफ्ज़ बोल रहे हो वो लफ्ज़ आपके किसी के दिल में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो वो दिल में हमारे उतरे हैं और हम बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे, हमें भी दुआओं में याद रखें हमेशा, और अपना भी बहुत सारा
0: हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर हैं। और आपकी बात से परवीन शाकिर का वो शेर याद आ गया कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर ही अक्सां, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर ही अक्सां, ज़र्फ के फर्क से एहसास बदल जाता
2: क्या
0: है।
2: क्या कहने क्या जी जी,
0: कोई हो आपके पास भी कोई गजल है तो
2: मैं सुनाइए। बिल्कुल, आपने परवीन शाकिर का नाम लिया है तो मुझे, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन,
0: मुझे वाह वाह शायरी में आपको पता है कि जब तक वाह वाह ना हो तो शायर को मजा नहीं आता शेर सुनाने का, तो उसके एतबार से अमीर मिनाई का एक खूबसूरत शेर ज़हन में आ रहा है कि शायर को मस्त करती है तारीफ, तारीफ शेर अमीर, शायर को मस्त करती है तारीफ शेर अमीर, सो बोतलों का नशा है इस वाह वाह में।
2: वाह क्या कह रहे,
0: सो बोतलों का नशा है इस वाह वाह में।

0: और जी हाँ सामिन, अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से। बताइएगा इनका शेरी ज़ोक आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा, रुखसार साहब ने जब हमसे बात की है तो उनके सलाम करने के अंदाज से महसूस हो गया था कि शायरी से उनके भी जो है वो ज़ोक मिलते जुलते हैं, और फिर उनके अल्फाज तो दिल में उतर जाने वाले थे। चलें अगर बात हमने की है, हमारी उनके दिल में उतर गई है, तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में ज़रूर उतर आई है। अल्लाह आपको सलामत रखें, इज़्ज़तें अदा करें, बहुत कामयाबियां अदा करें, और हमेशा के लिए यही दुआ है कि हम कभी भी किसी इंसान का बुरा ना चाहते हैं, ना चाहा है, ना चाहेंगे, और हमेशा बदले में भी ये चाहेंगे कि हमारे लिए भी कोई कभी किसी किस्म का बुरा ना चाहे। तो आप अगर किसी इंसान की तारीफ में इतने लफ्ज़ बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी किसी का बुरा चाह नहीं सकते हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, दुआ में याद रखे।
0: और अब ब्रेक की जानिब चलते हैं, और ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 के जरिए।
2: Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
6: And the winner is.
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274488877।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
11: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
12: टैक्सी लाइसेंस
10: हम है, आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
11: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
11: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk।
13: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
13: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
10: बालियां अंगूठियां और हार,
13: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
13: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
13: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
13: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Footlane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
14: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
15: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
14: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
15: मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
16: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
16: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
6: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
12: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
17: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: This is Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर, और आपके लिए हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल, जिसमें आपके मेज़बान हैं सैयद हसन, और आज स्टूडियो में हमारी मेहमान हैं आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे? तो बताइए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बताइए, जो हमारे शायर जी सुना रहे हैं सामिन, कैसी लग रही है आपको?
1: बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा ही है, और बहुत अच्छा तजर्बा ही है, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनना जो शायद आपके सामने ना हो, वो बहुत कम महसूस होता है कि आप वो कैसा पढ़ सकते हैं या फिर आप उनको कैसा समात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे ज़्यादातर इंटरेक्शंस आमने सामने लोगों से मेल मिलाप में होता है, और फिर हम महसूस भी करते हैं कि ये मुस्कुरा के पढ़ रहा है, ये रो के पढ़ रहा है, ये हंसते हुए खुशी में पढ़ रहा है, गमी में पढ़ रहा है, किस तरह। लेकिन इस माहौल में पढ़ना और सुनना बहुत महारत वाली बात है, और मैं यहाँ पर बैठ के बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रही हूँ आज के मुझे उन ऐसे माशाल्लाह अच्छे खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुहज़्ज़ब खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले और अच्छा ज़ौक़ रखने वाले लोग, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उनको मैं सुन पा रही हूँ। और मेरी तो एक कोशिश है, मैं तो कभी नहीं कहती कि मुझे पढ़ना भी आता है या फिर मैं, हाँ ज़ौक़ रखना एक अलग बात होती है, मुझे पसंद ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी उनके मुकाबल नहीं लाती हूँ कि वो एक हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने मुकाम बना लिए हैं। हम तो सिर्फ उनके कलामों को लेके अगर पढ़ लेते हैं और अच्छा पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए शायद इतना ही काफ़ी है।
0: मुझे अक्सर, मैं अपने सामीन के नाम अक्सर वही शेर कहा करता हूँ जनाब दाग दिलवी का, कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी
1: नहीं, सामने आते भी
0: तो
1: नहीं।
0: यही तो हमारे सामीन, ये कहते हैं ना कि रेडियो जो क्लाइमेक्स आपका क्रिएट करता है, ना वो टेलीविज़न दे सकता है ना सोशल मीडिया। वजह क्या है कि टेलीविज़न पे आप सभी आपको देख रहे हैं, आप बोले ना बोले आपकी तस्वीर बोल रही है, ठीक है, सेम आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी यही है। रेडियो वाइज वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कोई देख नहीं सक रहा, और आपकी तस्वीर से तखयलाती तस्वीर वो अपने ज़हन में बताते हैं, जो हमेशा बहुत खूबसूरत होती है।
1: मैं आपकी बात को मुकम्मल करती हूँ कि रेडियो एक ऐसा मुकाम है जहाँ तक आप तक एक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है। एक्सेस से मुराद ये है कि ना आपके चेहरे को किसी ने देखा हुआ, वो सिर्फ एक ख्यालाती दुनिया में आपको तसव्वुर कर रहा है कि इसकी आवाज़ ऐसी है, तो ये इंसान भी ऐसा ही है। तो चले, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप फिर ज़रूर ख्यालात में भी तसव्वुर करें कि हम कैसे हैं।
0: और यूं है कि एक गज़ल मैं सुनाता हूँ, फिर एक आप सुनाइएगा। खूब गज़ल स्पेशली हमारे रेडियो के हवाले से बड़ी खूबसूरत है, कि सांप भी बीन भी मदारी भी, सांप भी बीन भी मदारी भी, हाय क्या ज़ात है तुम्हारी भी, सांप भी बीन भी मदारी भी, हाय क्या ज़ात है तुम्हारी भी, और ताने बैठा है आगे पे तीर,

0: ताने बैठा है आईने पे तीर, ताने बैठा है आईने पे तीर, वो निशाना भी है शिकारी भी।
1: क्या क्या?
0: ताने बैठा है आईने पे तीर, वो निशाना भी है शिकारी भी। हम वली तो नहीं खुदा से मगर, हम वली तो नहीं खुदा से मगर, जान पहचान है हमारी भी। और सबसे खूबसूरत शेर जो रेडियो के हवाले से है वो ये है कि कैसे करते हो यार माइक पर, कैसे करते हो यार माइक पर, शायरी भी दुकानदारी भी।
1: क्या कहने,
0: कैसे करते हो यार माइक पर, शायरी भी दुकानदारी भी। अब आपके पास भी कोई गजल है तो सुनाइए, ताकि फिर अगला गीत आज के इस प्रोग्राम में। और सुनने वालों से इल्तमास है कि अगर आज के इस बज़्म में आप शरीक महफिल होना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। आइएगा, तशरीफ लाइएगा और अपने शौक का मुजाहरा कीजिएगा। जी आलिया, आप सुनाइए कुछ।
1: आपने पहले परवीन शाकर साहिबा का जिक्र किया था, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है और मेरे लिए एक रोल मॉडल है।
0: आप सोचिए कितनी कम उम्र पाई है,
1: बहुत कम उम्र,
0: और 52 से 92 तक 40 साल
1: बिल्कुल, और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने तजर्बात, और मैं उनके लफ्ज पढ़ती हूँ तो उन लफ्जों में जान नजर आती
0: और
1: है।
0: और उर्दू शायरी में स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो मकाम वो पा गई है उर्दू शायरी में,
1: बिल्कुल
0: वो किसी और खातून के हिस्से में आ ही नहीं सकता। वो फाउंडर है एक तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि उर्दू अदब की पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम क्या है तो वो
1: आप देखें कि उर्दू अदब में आपको दो चार नाम ही सुनने को मिलेंगे, जैसे बानो कुत्सिया हो गया, परवीन शाकर होगी, तो ये इनके नाम बोलते हैं, और इनके नाम नहीं बोलते, इनके लफ्ज बोलते हैं। मैं तो इनके लफ्ज पढ़ती हूँ, तो मैं आपको परवीन शाकर की ये सुनाती हूँ कि ये दुनिया की हकीकत पे मबनी है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, वाह वाह,
1: मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है,
0: आहा,
1: ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह वाह वाह।
1: कहते हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है,
0: आई है, क्या कहने,
1: और ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है,
0: वाह वाह,
1: बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग,
0: वाह वाह,
1: बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी
0: थोड़ी है, क्या कहने, हाँ जवाब,
1: और परों को काट दिया है उड़ान से पहले,
0: परों को काट दिया है उड़ान से पहले,
1: ये खौफ हिजर है, खौफ विसाल थोड़ी
0: ही है, वाह,
1: मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो,
0: मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो,
1: मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: और
0: वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक।
1: बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और आखिरी शेर में कहती है परवीन शाकर साहिबा की, लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले,
0: आहा, आहा।
1: लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है,
0: वाह वाह वाह,
1: ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है।
0: इनका एक शेर मेरे, मुझे बहुत ही पसंद है कि दुख पहुंचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, दुख पहुंचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, और मदावा तेरे अल्फाज नहीं कर सकते,
1: बहुत आला, बहुत
0: मदावा तेरे अल्फाज नहीं कर सकते। यूं करते हैं कि एक खूबसूरत गीत को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और सुनने वालों से भी मुल्तमिस हैं कि तशरीफ लाइएगा, बताइएगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, और हाँ शायरी का जो कुछ शौक रखते हैं तो ज़रूर तशरीफ लाइएगा। बेशक आप एक आधी शेर सुना दें, ज़रूरी नहीं कि आप गज़लियात का पूरा दीवान ही ले आएँ, बस एक शेर भी आता हो, बस मेन बात होती है कि आप हमारी इस बज़्म का हिस्सा बने, ताकि हमें खुशी हो, हमें पता चले कि कौन हमें कहाँ कहाँ पर सुन रहा है। आइए एक खूबसूरत गीत को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आवाज़ है मलका इतरा नमनूर जहाँ की, मेरी ज़िंदगी है नगमा, मेरी ज़िंदगी तराना।

0: और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी मलका इतरा नमनोर जहाँ की। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। कहते ना कि कभी हर कदम पे मंजिल, कभी हर कदम पे ठोकर, कभी हर कदम पे मंजिल, कभी हर कदम पे ठोकर, कभी है खिलाफ दुनिया, कभी साथ है जमाना। जिंदगी इसी चीज़ का नाम है। आपके जिंदगी के बारे में क्या तजुर्बात है?
1: ज़िंदगी मैं समझती हूँ कि कभी एक धुन में चल ही नहीं सकती है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अगर ना ज़िंदगी में पाए जा रहे हों तो उसे हम ज़िंदगी कहेंगे ही नहीं।
0: सही।
1: ना इस ज़िंदगी में कोई सदा खुश रहा है, ना इस ज़िंदगी में कोई सदा गमगीन रहा है। हम बोलेंगे सारी ज़िंदगी इंसान को दुख ही मिले, तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है जहाँ पे आप मेहनत करते हैं, जहाँ पे सब कुछ करते हैं और आपको कामयाबियाँ मिल जाती हैं, जहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को मेहनत किए बगैर भी बहुत कुछ मिल जाता है।
0: इसे किस्मत कहते हैं।
1: तो मैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद किस्मत जो है वो महलों पे राज करती है, ठीक है, और जो पढ़ाइयाँ हैं, किताबें हैं या मेहनतें हैं, वो जो है वो मजदूरियाँ कर रही होती हैं या सड़कों पर होती हैं। तो मैं ज़िंदगी के, मैंने तो बहुत बुरे और अच्छे दोनों तजर्बात देखे, जबकि मैंने बुरों से हमेशा सबक सीखा, अच्छों से हमेशा उम्मीद ली है कि मैं इससे मज़ीद अच्छे कर सकूं। बुरों से कभी मैंने दिल नहीं तोड़ा, ना मैं बोलूं कि ख़ुद को कमज़ोर समझा कि अभी मुझे आगे करने को कुछ नहीं है, या शायद मेरा दिल टूट गया, मैं वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकती हूँ। तो मैं सीढ़ी गिरती, फिर गिरती, फिर गिरती और फिर दोबारा उठ के छलांग लगाती। तो मेरी सबको यही सलाह होती है कि ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको उसको बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ तय भी करना पड़ता है, और हिम्मत और हौसले के साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है और कामयाब भी होना पड़ता है, और इसी का नाम ज़िंदगी होता
0: है। यस यस यस, कहते हैं ना कि ज़िंदगी है लम्हा लम्हा फैसले करने का नाम।
1: हाँ,
0: ज़िंदगी है लम्हा लम्हा फैसले करने का नाम, हर कदम पे एक ताज़ा इम्तहान है सामने।
1: क्या कहने
0: जनाब दामन का, गुजरात से शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और खूबसूरत शेर है। कि और फैज़ ने कहा कि ज़िंदगी क्या है, एक मुफलिस की कबाह है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैवंद लगे जाते हैं।
1: क्या कहने, कितने बड़े लफ्ज़ हैं, बहुत आला, बहुत आला। और मेरा एक और मानना भी है कि चले अगर ज़िंदगी है तो इस ज़िंदगी में मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें फैला के क्या मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका अगर किसी माशरे में कोई ऐसा ताल्लुक असर वसूख पाया जाता है तो आप अपना कोई ऐसा असर ना छोड़ें कि आपके जाने के बाद लोग आपको बुरे लफ्ज़ों से याद करें। ज़िंदगी का मकसद ये है कि जब आपके बाद कोई बंदा चला भी जाए तो आपके, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, जबकि ऐसा कम होता है।
0: वो एक जोक है, आप पता है रेडियो पे हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। एक बहुत अच्छा है, आप बस इशारतन गुजर जाऊंगा, थोड़ा सा इशारा देके कि कोई आदमी था तो वो बहुत बुरा था, तो हद होगी जब वो दुनिया से गया तो बच्चों को कह के गया कि कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे याद रखें, तो वो जो बच्चे थे वो उससे भी बदतरीन हो गए, तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो इसका बाप था, किसी हद तक रहता था, आपने तो हद ही कर दी है भाई।
1: आखिर है, बिल्कुल।
0: यूं है कि एक जिंदगी के हवाले से खूबसूरत गीत सुनते हैं, आवाज़ है लता की।
1: बिल्कुल।

0: जी हाँ सामीन, अभी आप ये जिंदगी के हवाले से खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता की। और इससे पहले जिंदगी के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे आलिया, इस हवाले से शेर भी सुना रही थी ऊपर, कुछ हमने भी सुनाए। आपके पास कुछ और भी सुनाने को है?
1: बिल्कुल, मैं ज़िंदगी, मैंने पहले कहा है कि ज़िंदगी नाम ही मोहब्बत का है, तो मैं मोहब्बत के बारे में कुछ सुनाना
0: जी
1: चाहूँगी।
0: जी
1: और मोहब्बत सिर्फ जो है वो, मैंने पहले जिक्र किया था कि मर्द और औरत की मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत में और बहुत से रिश्ते जो हैं वो जुड़े हुए मुंसलिक होते हैं। तो मैं उन रिश्तों के नाम ये कुछ अल्फाज करना चाहती हूँ कि मुकम्मल दो ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है,
0: क्या कहने,
1: मुकम्मल दो ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है।
0: वाह वाह,
1: और मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा
0: कज़ा
1: भी
0: भी
1: छूट
0: छूट जाती
1: जाती
0: है।
1: है।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह,
1: मोहब्बत की नमाजों में अमामत एक
0: एक
1: को
0: को सौंपो,
1: सौंपे,
0: वाह।
1: मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नियत टूट जाती
0: क्या
1: है।
0: कहने, क्या कहने,
1: और मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम,
0: हाँ,
1: मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती
0: बहुत
1: है।
0: खूब, बहुत खूब।
1: तो मोहब्बत एक तजर्बा होता है वो, आप और ये तजर्बा मुझे लगता है कि वालिदा की गोद से लेके हमें लखत तक उतरने तक भी ना ये
0: कहते ना
1: हमारे
0: कि
1: तजर्बात होते हैं।
0: मोहब्बत सबसे करता हूं दुश्मन ही क्यों ना हो, मोहब्बत सबसे करता हूँ दुश्मन ही क्यों ना हो, समझा हूँ जब से हुरमते नौहे बशर को मैं,
1: क्या कहने, क्या कहने, बहुत आला।
0: और औरों के लिए धूप में चुपचाप खड़े हैं, औरों के लिए धूप में चुपचाप खड़े हैं, सीखे कोई आदाबे वफा संग शजर से। ये
1: हाँ,
0: तो जिंदगी है कि
1: बहुत आला,
0: दूसरों के लिए आप कितने मेहरबान हैं, दूसरों के लिए
1: बिल्कुल
0: आपके पास कितना प्यार है।
1: बिल्कुल
0: जहाँ आपका कुछ लालच हो वो तो मोहब्बत नहीं है, वो तो तजारत है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारे एक मैनचेस्टर से शायर हैं जनाबे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी थे जनाबे जायद जफर साहब। तो उनका वो शेर जहन में अक्सर रहता है कि वो एक शख्स था जो मुझसे प्यार करता था, वो एक शख्स था जो मुझसे प्यार करता था, वगरना शायद तो बस कारोबार करता था।
1: हाँ, वाह, क्या
0: ये चीज़
1: कहने,
0: है
1: बहुत
0: कि
1: आला।
0: भाई का भाई को कहना कि भाई जब आप मंजिल पे पहुंच चुके तो मुझे कॉल कर देना, ये भी मोहब्बत है।
1: मोहब्बत है ना, बेलोस है, इसमें
0: यह
1: लालच तो नहीं है ना।
0: इवन बीवी का चाय को चख के कहना कि चाय ठीक है,
1: मोहब्बत
0: ये भी मोहब्बत के रंग हैं। आप
1: बिल्कुल
0: रास्ते में चल रहे हो, अपने रास्ते से पत्थर हटा दिया कि यार किसी को, हो सकता है
1: लग ना
0: किसी के
1: जाए।
0: गाड़ी के टायर के नीचे आके तो किसी की स्क्रीन टूट सकती है, ये भी
1: बिल्कुल
0: मोहब्बत है।
1: मोहब्बत है।
0: आप वही वसी शाह वाली बात के, आप जैसे पाकिस्तानी यहाँ तो वो शायद कंसेप्ट नहीं है कि आपने घर में पंखा चलाया हुआ है, अचानक बाहर से एक चिड़िया आती है जो आपके पंखे में घुस जाती है, तो पंखे को रोक के उसे वहां से निकाल देना भी मोहब्बत है, इबादत
1: मोहब्बत
0: है।
1: है, बहुत
0: वो
1: बहुत
0: आपने
1: बड़ी
0: पढ़ी होगी,
1: बात है,
0: मोहब्बत है, इबादत
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी
0: जी
1: है।
0: तो सुनने वालों से इल्तमास है कि हमारे पास, देखिए जी, दामन वक्त में तो गुंजाइश नहीं रही हमारा तो, बिल्कुल प्रोग्राम अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है और पता तक नहीं चला। बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं,
1: बहुत शुक्रिया
0: आप
1: आपका।
0: पहली बार आप तशरीफ लाई हैं तो आपको खुश आमदेद करते हैं अपनी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की टीम में। उम्मीद करते हैं कि आप इसका हिस्सा बनेंगी और इंशाल्लाह ये सफ़र यूं ही रवान दवान रहेगा। आप बताइएगा आज आपका पहला दिन कैसा आपको लगा यहाँ पे?
1: इंशाल्लाह आपके अल्फाज इंशाल्लाह पाया तक मील पे पहुंचेंगे, ज़रूर जो है वो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का हिस्सा मैं बनूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे सामईन मुझसे जो समात की तवक्कोआत रखते हैं मैं उन तवक्कोआत वक्त पे पूरा उतरूं, और मैं हमेशा उन्हीं लफ्ज़ों का चुनाव करती हूँ जो दिल में उतर जाने वाले होते हैं, और मुझे वो बोलना भी पसंद है, वो कहना भी पसंद है, और वही सुनना भी पसंद है। और आज यहाँ पे बैठे हुए मुझे लगता है कि जिन चीज़ की मैं तवक्कोआत करी थी मैंने सुने भी वो हैं, और मैंने बोले भी वो हैं, और सामईन तक भी मैंने वही अल्फाज जो हैं वो पहुँचाए भी हैं।
0: बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आप तशरीफ़ लाइएगा। सैटरडे को हमारा प्रोग्राम
1: इंशाल्लाह
0: होता है, वेंसडे को होता है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और अब
1: इंशाल्लाह
0: इसी के साथ अपने सुनने वालों से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगली महफिल तक, अगली मुलाकात तक अपने मेज़बान सैयद हसन को इजाज़त दीजिएगा। कहते हैं ना कि इजाज़त मिल गई है मांगते ही, इजाज़त मिल गई है मांगते ही, ठहरना अब मेरा बनता नहीं है।
1: क्या कहने, क्या
0: सामीन
1: कहने,
0: इजाज़त दीजिए, अल्लाह
1: बहुत
0: हाफिज़।
1: शुक्रिया।
0: के पास
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: The hope of the past, the need of the present, and the demand from the future.
3: Medium wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
5: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
5: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
6: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
6: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
6: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटरी सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स

0: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
1: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
0: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास?
1: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
0: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है,
1: रियल इंडो चाइनीज फूड के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
0: और हाँ, सेकंड वाइफ के हाथों बने डिजर्ट जरूर चखिएगा।
1: सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, 78 लिली क्रॉफ्ट रोड, BD9 5AB, फोन ब्रेडफोर्ड 2020 00।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: इस हसीन इकरार मोहब्बत के बाद शुरू होता है वादों, इरादों और कस्मों का रंगीन सिलसिला।
4: अक्सर ये इरादे नाकाबिले अमल होते हैं, ये कस्में नाकाबिले यकीन होती हैं, मगर फिर भी बड़े ही पुरकशिश, बड़े ही दिलकश होते हैं ये वादे।
3: शायर है हसरत जयपुरी और आवाज़ आशिक बनी है अभिजीत।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
2: इस तरफ प्यार की आग इस कदर तेज हो तो उस तरफ आंच पहुंचना लाजमी है.
3: इश्क जितना तपता है उतना ही चमकता है.
2: हकीकतों की दुनिया पर जमाने का इख्तियार सही, मगर ख्वाबों की जन्नत पर दुनिया की हुकूमत नहीं. इसी एहसास का बयान कर रही है सदाए नाज़नीन साधना सरगम.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच 1304।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने काफी डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने 20% के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड लाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
5: तो क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स जहाँ फिशिंग,
5: माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पैल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306 567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.